0: 欢迎回到新闻现场。当我们常说极端气候四大不调的时候呢，眼前我们看到的是世界各地的雨量也好，或者是淹水灾情都在刷新记录。刚刚我们看的是泰国曼谷，接着看美国，也从这一场的雨灾当中知道了，即便是世界第一大的强国，它也没有办法幸免于难。画面中这个是美国东岸的新泽西还有纽约州，人口非常稠密的地方降下暴雨，淹水最深的时候一度到了91公分，超过了成年人的腰部，泡水车还有房屋受损，灾情也相当的严重，甚至有一位公家机关的人员在防灾的过程当中不幸被倒塌的树木压到而身亡。
1: 街道成了汪洋一片，积水深达膝盖，车辆在水中艰难前行。强烈东北风暴持续袭击美国东北部沿岸，新泽西州与纽约州首当其冲，并造成数万户停电。
2: When you live down here, we're kind of ready for it. It kind of happens all the time. Even get the lightest little rain, you're going to have flooding. But this nor'easter was a little bit more than just flooding. So we had probably around 3 feet of water over here.
1: 除了淹水，强风和巨浪也让新泽西海岸遭到明显侵蚀，大量沙子遭到冲刷，部分沙丘被削出明显落差。
3: Look over here towards the dunes. It's now a shelf when it used to be a gradual decline into the actual beach. And a lot of the pilings sticking out of the sand, which were never there before. And the staircases going down into the beach are off the sand about a foot or two, which used to be flush.
1: 虽然风暴强度逐渐减弱，但美国国家气象局表示，部分地区仍可能出现局部大雨，接下来的涨潮也可能再次造成淹水，当局持续加强戒备。大新闻，廖远编译。
0: 好，继续关心的就是泰国水患慈济的赈灾行动。在这一场广袤灾区的水患当中呢，有一群人是特别弱势的，他们就是从外地到曼谷打工的劳动阶级。淹水之后，他们当然暂时失去了工作，然后也无家可归，所以就露宿街头好几天。在区公所的安排之下，昨天开始他们住进了慈济泰国静思堂，连日来终于可以在这里不再漂泊，好好的睡上一觉。同时，曼谷志工也持续供应热便当，由计程车司机最熟门熟路的他们，这几天也没有做生意，加入了送餐志工的行列。
4: 曼谷的雨势未歇，多处的低洼地区仍然积水未退。计程车司机塔提文，即使每一条路他都熟悉，依旧是小心慢行。水患发生后，他不载客做生意，而是载着便当分送给需要的人。
5: บางคนเขารถเสียรถจมน้ำแบบนี้เราคิดว่าเขาน่าเห็นใจกว่าเราอ่ะเราออกมาพ้นน้ำตรงนั้นได้เราก็เลยช่วยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ค่ะมันก็รู้สึกดีกว่าจะอยู่เฉย
6: ๆผมอยากให้
5: นอน
6: ถ้าครอบครัวนอนฝั่งนี้แล้วก็ชายไปนอนฝั่งนู้น
7: ผู้หญิง
6: น
7: อ
6: น
7: ฝั่งนี้จะแยกชายหญิง
6: ใช่ครับ
5: ค่ะ
4: 需要帮助的还有这群来自外地的打工人，连夜大雨，宿舍淹水，他们被迫紧急撤离，已经好几天夜宿街头。
5: ยังพอเดินได้แต่ว่าพักอาศัยไม่ได้คือเขาก็ตัดไฟไว้ที่แคมป์คือตัดไฟค่ะใช้ไฟไม่ได้ก็เลยพากันอพยพมาอยู่ใต้สะพาน
4: 30位义工在区公所的安排下来到静思堂，终于能够好好休息。
5: บางคนเขาก็ไม่มาเขาก็นอนที่แคมป์
8: ทำไมอ่ะ
5: ก็ห่วงคงเขาม
8: ีที่ยังว่างอยู่เราเขามานอนที่นี่ก็ได้สบายเช้าก็มีอาหารเช้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวบอกเขาว่าเราจะมีข้าวต้มเมนูข้าวต้มให้นะครับเราก็ตอนเที่ยงเราก็จะมีข้าวกล่องให้
4: 慈济泰国分会也持续提供发放300份热食便当，并且备妥必备的药物，从饮食到日常所需，准备周全，期待让不安的人都能够找到安心之处。大爱新闻，黄德兴、苏品提、桑瑞莲，泰国报道。
0: 再来看到的故事则是一所学校改变了整个社区的氛围，这是在尼泊尔的兰皮尼。以前乡村里头很多孩子因为经济弱势，因为性别的歧视，或者是隐性的种姓制度，他们是没有办法上学的。自从慈济兰皮尼学校成立之后，广邀家长把他们的孩子带来上课，于是不止孩子来了，爸爸妈妈尤其是妈妈也跟着来学校，因为他们开始在学校 道理呢替小朋友讲故事。开学的日子，上课时间还没到，妈妈们都提早一个小时就报到了，因为他们走进图书馆，当起了大爱妈妈。
7: आज क्लासले पहिलो नम्बरमा स्थान बनाए उनी कथा भन्न स्टेजमा जान्छन् र म उहाँ उनको छेउमा छु
9: मर्निंग एभ्रीवन
7: उनको बुबा लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्नुहुन्छ त्यसैले हरेक बिहान नास्ता तयार गर्ने सफा गर्ने र बच्चालाई स्कुल लैजाने प्राय मेरो जिम्मेवारी हो स्कुल बिहान 9 बजे सुरु हुँदैन तर हामी हरेक दिन बिहान 8 बजे स्कुल आइपुग्छौँ क्रियान्स पढ्न पुस्तकालय जान्छ र म बस्छु उनको साथ राख्न र अन्य बच्चाहरूलाई साथ दिन
10: 我们开始呢是说，那些妈妈们、家长讲故事。后来小朋友说他也要讲，哇，那一个讲、两个讲，每个要抢着要讲故事，他们很喜欢。
9: Story time, story time.
7: 8:40 बजे बाल बालिकाले आफ्नो टेबल र कुर्सी मिलाउन थाल्छन्। मलाई थाहा छ उनीहरूले चुक्तापूर्वक पर्खिरहेको कथाको समय आइपुगेको छ। क्रियान्ससँग स्टेजमा जानु मेरो लागि एकदमै विशेष क्षण हो सुरुमा म केवल मेरो आफ्नो बच्चासँग समय बिताउन चाहन्थे बिस्तारै मैले महसुस गरे कि अन्य बच्चाहरूलाई पनि साथ चाहिन्छ मैले कहिले कल्पना गरेको थिएन कि हरेक दिन केवल 1 घन्टा अतिरिक्त बिताउँदा पनि यति ठुलो फरक पर्नेछ मेरो बच्चा सिकिरहेको छ र म पनि सधैँ सिकिरहेको छु नौ बजे मेरो बच्चा कक्षामा जान्छ तर क्रियान्स र मेरो लागि हाम्रो दिन पहिलो कक्षा वास्तवमा 8 बजे सुरु भयो
0: Bye-bye. 接下来我的阿公阿嬷单元要讲的是一代人的善念如果能被自己的儿孙辈记忆并且传承是一件多么美好的事情今天来认识这位阿嬷她的名字叫做杨玲月娥月娥阿嬷有一位很有名的孙子那就是国际知名的大环表演艺术家杨世豪在杨世豪的眼里阿嬷做事永远替别人着想自己生活中的俭省都是为了存下善款能够帮助需要的人阿嬷是一位环保志工生活哲学也影响着杨世豪杨世豪说在他从事表演艺术的过程当中一度是阿嬷引领着他向前阿嬷教会他的就是有一点点能力都要为人群付出让我们热烈掌声来欢迎杨世豪
11: 有人说看我的表演好像可以感觉到一种力量甚至留下感动的泪水其实我也曾经对我的人生感到迷惘直到我遇见了大环我感受到大环给我的爱是毫无条件的那个爱就好像小时候我在下课后啊躺在阿嬷的脚边跟阿嬷一起看电视一样那样的舒服跟自在
12: 四号四年的时候呢我两个阿嬷在打拼家里都教给他他们都教给妈妈照顾所以他跟阿嬷特别的亲嘴巴很甜啊他就是跟阿嬷连在一起这样子阿嬷很好笑今天啊义卖会啊研游会啊都他都有参与到啊没有教书会啊虽然说他脚不方便但我印象当中他也常常去环保站
11: 阿嬷的脚不太好 他会一拐一拐的走到抽屉那边，打开抽屉，摆一些零钱进去，说是要捐给电视上那位师父去做善事的。阿妈她很喜欢吃甜食，每次吃汤圆的时候，我都会想到她。不论是跟着马戏团做国际表演，还是下乡做公益演出，我现在做的事情就是小时候阿妈教会我的，有一点点的能力就要为人群付出。
0: 谢谢杨世豪，我们的大环表演艺术家，谢谢。
11: 当我有机会跟慈济合作，我觉得自己好像变成一个小菩萨在转动法轮。原来我的这条路是阿嬷默默带我走出来的。
13: 哇，我好厉害，就是这啦。然后我自己在这边已经做了快要十年了。
11: 亲自见到上人，看到小时候跟阿嬷一起看电视的时候，电视里面的那位出家师父出现在我面前，我真的很感动。
14: 阿嬷过去啊，我还见伊会过来找师父。阿叔会搁牵着伊的手行，
11: 哈！大乘妙法莲华经啊！我发愿要手抄法华经，看我的大环法轮再度转动起来时，是不是可以感动更多的人？阿嬷，感恩您教我无私奉献的精神，也请您陪着我一起转动大环的法轮吧。
0: 他说自己从来没做过坏事，为什么得到了癌症？曾经心有不甘，他在佛法当中学会与自己和解。休息一会儿，三分钟广告后回到新闻现场。
14: 方便品呢，专门伫咧说实相，虽然名称讲叫做方便品啦。但是呢，是妙款啊，内涵呢就是真实多哈。方便品的内底，在在都要讲出了呢，佛陀安怎用方便的教法来施教化度众生，不分在什么款的时代，咱的烦呢都是。我有时代的障碍，那看这个时代所需要安怎样引导人人去施展你的智慧，